هلو هلو هلو هلو هلو हेलो एवरीवन लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल है, कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं, यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, सुबह खैर मेरे प्यारे तमाम सुनने वालों को, सुबह खैर मेरे प्यारे मोहतरम और मुअज्जज सामईन। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत आफियत और बेहतरीन सेहत के साथ होंगे। मैं आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, आप लोगों का प्रेजेंटर, आप लोगों का मेजबान ताहिर जमान, और आप सुन रहे हैं एफएम 94 रेडियो दिलबर सौ भी। आप सबका इस खूबसूरत प्रोग्राम में या इस खूबसूरत दिलकश और बहुत ज्यादा दिलकश महफिल में दिल के अथाह गहराइयों से खुशामदीद, खैर मकदम। जनाब सबसे पहले बताइएगा कि आप लोगों के हालात वाकियात कैसे हैं, आप सब ठीक ठाक हैं, यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जिंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजार रहे होंगे। कोई नाश्ते की तैयारी में मसरूफ होगा, कोई दफ्तर दुकान या कोई अपने कारोबार की तरफ जा रहा होगा, कोई खेतों में काम की तैयारी कर रहा होगा, और कोई वो पश्तों में क्या कहते हैं, तमाखुआ नु बठे गमदन सुख लगी आई और कोई अपनी सुबह की चाय के साथ जो है ना हमारी आवाज को अपना साथी बनाए बैठा होगा। जहाँ कहीं भी आप हैं, अल्लाह ताला आपके दिन को आसानियाँ, खुशियाँ और खुशियों में मतलब जाना बदल दे जी, और आपको ढेरों सारी मतलब बहुत सारी कामयाबियाँ अता करें, आमीन या रब्बल आलमीन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइज, दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपनी समातों को ट्यून किया है और अपने पसंदीदा और मोस्ट फेवरेट एफएम स्टेशन एफएम 94 रेडियो दिलबर सौ भी को आप सुन रहे हैं। एंड ये है कि इस वक्त हमारी आवाज सिर्फ सवाबी ही नहीं बल्कि सवाबी और इसके गिरदनवा के जितने भी इलाके हैं वहां पर सुनी जा रही है। जहां जहां तक ये आवाज पहुंच रही है जी, वहां मौजूद हर सुनने वाले को या हर सुनने वाले को मोहब्बत बरा सलाम, ढेरों दुआएं और खुशामदीद जी। आपकी मोहब्बत, आपके एतमाद और आपकी रफाकत ही इस प्रोग्राम की असल ताकत होती है। सो मेरे दोस्तों, अगर जिंदगी की बात की जाए तो जिंदगी वाकई जो है ना एक खूबसूरत सफर है। इस सफर में कभी खुशियां हमारा इस्तकबाल कर रही होती हैं, कभी आजमाइशें हमारा मतलब ये कि इम्तिहान ले रही होती हैं ना, कभी कामयाबियां हौसला बढ़ा देती हैं और कभी नाकामियां हमें मजबूत बना देती हैं। जिंदगी कभी एक ही रंग में नहीं रहती जी, इसके मौसम बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, मगर एक चीज जो कभी नहीं बदलती या बदलनी चाहिए वो है जनाब इंसान की उम्मीद, उसके किरदार, उसकी सोच, उसकी हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने चाहिए। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि जो चीज नहीं बदलनी चाहिए वो है जनाब इंसान की उम्मीद, उसके किरदार, उसकी अच्छी सोच। जो लोग हर सुबह को एक नई शुरुआत समझकर उठते हैं ना, वो जिंदगी से कभी मायूस नहीं होते जी, क्योंकि हर नया दिन जो होता है लिसनर्स, हर नया दिन अपने साथ एक नया मौका लेके आता है, एक नई दुआ लेके आता है, एक नई उम्मीद लेके आता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, आप लोगों के साथ बातचीत मतलब बातों का सिलसिला जारी सारी रहेगा। आपने हमें अपने होने का एहसास दिलवाने, अपने होने का एहसास कैसे दिलवाएंगे, 09382804295 इस नंबर पे आप लोगों की लाइव कॉल्स को हम एंटरटेन करेंगे, शामिल करेंगे और एक अदद मौजू भी होगा जी, मौजू के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे, बातचीत होगी। सो आपने आना जरूर है, अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलवाना है, ठीक हो गया जी। ट्रैक सुनते हैं जी, वापस आते हैं, जय कीमत मेरे साथ साथ रहेगा। इसके बाद टॉपिक को हम जो है ना एक्सपोज करते हैं, टॉपिक आप लोगों के लिए जो है ना यहाँ पे हम ऑन एयर करते हैं, मौजू जय कीमत मेरे साथ साथ रहेगा। और किस किस के हालात खराब हैं भाई, अगर जिसके हालात खराब हैं तो ये भाई आप लोगों ने उम्मीद का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना, ठीक हो गया जी। उम्मीद पे वैसे भी कहते हैं कि दुनिया कायम है भाई,

ऑलराइट जनाब, एक बार तो फिर मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप हमारे संग संग हमारे साथ साथ और हमारी इस आवाज को लाइव एंड एक्सक्लूसिव सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर स्वाबी के पैनल से। अच्छा जी, आज का हमारा बहुत ही खूबसूरत मौजू है जी। अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए दुनिया बदलने का इख्तियार मिल जाए तो आप सबसे पहले जो है ना क्या बदलेंगे, क्या चीज बदलेंगे? लगज गमदन तो उसका इख्तियार मिला उसी यो रज दुपारा चिता उस गमदनों हर सकोलेशन ता सो आज गमदनों सबक हो जी। अच्छा, जरा एक लम्हे के लिए जो है ना तस्वर कीजिएगा कि आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो आपको ये इख्तियार मिल गया कि सिर्फ एक दिन के लिए जो है ना आप दुनिया में अपनी मर्जी की तब्दीली जो है ना ला सकते हैं। क्या आप दुनिया से नफरत खत्म करेंगे? क्या आप हर दिल में मोहब्बत पैदा करेंगे? क्या आप किसी गरीब के घर में खुशियां लेके आएंगे? क्या आप हर बीमार की सेहत जो है ना दोबारा उसे वापस दे देंगे, या फिर आप लोगों के रवैये बदलेंगे ताकि जो है ना हर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करना सीख जाए? मेरे मोहतरम सामीन, अक्सर हम दुनिया को बदलने की बात करते हैं, लेकिन शायद दुनिया की सबसे बड़ी तब्दीली वो होती है जो इंसान अपने अंदर लाता है। अगर हर शख्स सिर्फ एक फैसला कर ले कि वो आज किसी का दिल नहीं दुखाएगा, किसी से झूठ नहीं बोलेगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा और जहां मुमकिन होगा किसी के लिए आसानियां पैदा करेगा, तो शायद दुनिया वाकई जो है ना बदलना शुरू हो जाए। बड़ी तब्दीलियां हमेशा छोटे छोटे अच्छे और बेहतरीन फैसलों के जरिए मतलब जो है ना आती हैं। और अब सवाल ये है कि आप सबके लिए यहाँ पे ये सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा कि अगर वाकई आपको एक दिन दुनिया के लिए मिल जाए, मतलब एक दिन के लिए जो है ना आपको ये इख्तियार मिल जाए, मतलब जो है ना आपको आपके पास इख्तियार हो, तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? अपने ख्यालात, अपनी राय, अपनी खूबसूरत बातें जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा जी, क्योंकि आज की इस महफिल में सिर्फ मेरी नहीं बल्कि आप लोगों की बातें होंगी। आप जरूर आइएगा, मुझे अपने होने का एहसास दिलवाएगा, और मुझे अपने होने का एहसास कैसे दिलवाएंगे? 09238280495 पे।

मुनकर मुनकर नयमा ट्रैक शामिल करते हैं जी आप लोगों के लिए ये वाला नीला आसमां। आई होप कि ये ट्रैक आप लोगों को अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे और मेरा साथ देंगे, मेरा साथ निभाएंगे। मेरा साथ निभाने के लिए नंबर जैसे बार बार मैं आप लोगों के लिए ऑन एयर कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी कुछ बातें करते हैं यहाँ पे किस हवाले से जी। ये ट्रैक भी बड़े मजे का ट्रैक चल गया है भाई, हाय हाय हाय क्या ट्रैक चल गया है। अच्छा इस ट्रैक के साथ मैं अपनी आवाज को कुछ थोड़ा सा मिक्स करना चाहूंगा, देन फिर जो है ना आगे चल के आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के पैगामात, आप लोगों की लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।

अच्छा तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि बाद मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिनमें मुलाकातें बहुत कम होती हैं मगर एहसास बहुत गहरे होते हैं। कभी सिर्फ एक नजर बरसों का सुकून दे देती है, कभी सिर्फ जो है ना एक आवाज पूरे दिन की थकन खत्म कर देती है, और कभी किसी का नाम सुनकर दिल इस तरह धड़कने लगता है जैसे जो है ना पहली बार मोहब्बत हुई हो। ये याद रखिएगा कि मोहब्बत का हुसन भी यही है कि वो इंसान को छोटी छोटी चीजों में बड़ी बड़ी खुशियां तलाश करने का एक हुनर सिखाती है। और एक हल्की सी हवा, एक खुशबू, एक बारिश, एक शाम या एक नीला आसमान, सब कुछ किसी एक शख्स की याद से जुड़ जाते हैं ना। मेरे दोस्तों, सच्ची मोहब्बत में सिर्फ जो है ना साथ होना जरूरी नहीं है बल्कि एहसास का जिंदा रहना जरूरी होता है। ये पहले ही बात मैं कह चुका हूँ। कुछ लोग मीलों दूर होते हैं मगर दिल के इतने करीब होते हैं कि हर दुआ मतलब उन्हीं की गिर्द घूम रही होती है, हर दुआ में उन्हीं का नाम होता है। और कुछ लोग पास होकर भी दिल से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए मोहब्बत का फासलों से नहीं एहसास से ताल्लुक होता है। जहाँ खुलूस हो, एहतराम हो, दुआ हो, एतमाद हो, वहाँ मोहब्बत वक्त गुजारने के साथ। देखें, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि जहाँ खुलूस हो, एतमाद हो, दुआ हो, वहाँ मोहब्बत गुजरने के साथ और ज्यादा मतलब खूबसूरत हो जाती है ना, बेहतरीन हो जाती है। और कभी कभी दिल भी यही चाहता है कि काश वक्त कुछ लम्हों के लिए रुक जाए, ना कोई जल्दी हो, ना कोई मजबूरी हो, ना कोई फासला हो, बस एक नीला आसमान हो, ठंडी सी हवा हो, खामोश सी मतलब जो है ना शाम हो, और सामने वो शख्स बैठा हो जिसकी मौजूदगी से दिल को सुकून मिलता है। शायद मोहब्बत की सबसे बड़ी दौलत यही है कि इंसान किसी के साथ खामोश रहकर भी खुद को मुकम्मल महसूस करे। सो आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को एंटरटेन करते हैं, जी शामिल करते हैं 0938-3280-495। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल्स कर सकते हैं और आपकी लाइव कॉल्स, टेलीफोन कॉल्स हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जी फर्स्ट कॉलर चेक करते हैं, पहले कॉलर हमारे साथ कौन देंगे, कहाँ से। 0938-3280-495। और साथ साथ हम ये एक खूबसूरत सा ट्रैक भी आपके लिए यहाँ पे शामिल करते हैं एंड इसे भी आप बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे। साथ रहिएगा मेरे साथ साथ, अपने होने का एहसास मुझे मतलब साथ साथ दीजिएगा।

नेक्स्ट कॉलर गुरु जी सोख रज दखम जना सिफर 9308032-280-495 कॉल कट शो जी ड्रॉप शो दरूर गम देन याद आजमा खोर्रा डेर पे इंतजार बने हो डेर दी सबर को आखिर गम दी कॉल कट शो बर के दोबारा ता सब्सक्राइब कोलिशे

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0: हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, खुकुचरता दग जवानको पवख बाने गम उनकलेशी न प रारवान वख की दग जवान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा तुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना द दग दानो चकम दागो न दी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्म ही की पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्सिलिक एसिड टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी।
2: माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
3: जो उस्ता कालू द पारा शारजी ता सिंगलार शमा
2: ओहो पमीना बाजार टोपई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वैरायटी मौजूद दा
3: नुदा सिवाया कना
2: शारजा ज्वेलर्स प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स फोन 09382732 65।
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

0938 280 495 कॉन्टैक्ट कॉल लिशे कॉल्स कॉल लिशे ओके जनाब दस दे तसबारा नेक्स्ट टप्पी जिशान आवाज के प्रोग्राम के शामिल हो जी और आई होप दगा टप्पी हम चुकम दन सास बखोशी और चुकम मैसेज में रागली मैसेज में प्रोग्राम के शामिल हो जी मनन भाई जान छे तास चुकम दन प्रोग्राम द पर रागली रेशमा खान फ्रॉम पंचपीर मनना शुक्रिया रेशमा खान शुक्रिया आओ भैया मैं माहिन बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन गमदन और खल करके

0: अच्छा जी माहीन हमारे साथ दे रही है कोठा से, बहुत बहुत शुक्रिया माहीन आपने हमारे साथ दी है। हाय सलाम ना भाई जान सिंह खे ठीक ठाक ये जयम खिंजा खिंजा ठोपाई ना तासिंगे भाई जान प्रोग्राम सम खुले दे भाई मुबारक शाह चेताउस गमदन दिल दसवावे की प्लाट वागस चरत नजर है ना के वाह वाह वाह वाह वाह डियर खाइस्ता टपी दी स्तास बशान दी स्तास आवाज गमदन उफ उफ उफ मुकम्मल हद दे
1: पकड़स दी पकी नवी
0: दी टपी ता ख्याल गई
1: जंदी तरक्या मता पूरे विन
0: दी टपू तो जगमदन लग वके दे जी आओ टोपक डस दी पकी नवी आओ दस्तर को जंग तर क्यामत पूरी हुई ना।

0: ये दरोगजनों दरोगजनों दरोगजनों बोले सुख दरोग जकीन करना नो दिल तो स्वाभाविक दे जुन की और स्वाभाविक जी कम देन लगा जुन द तरस रखी ची सही द करना
1: नरे नरे
0: दिल ता दी खल कुनो बज कम देन और फड़े दरो ना ता समाज वे ची वरियस जम दे और हवा हम द हवा हो मनु हवा इश्ते वरियस चढ़ता दे वरियस खुनिश्ते येरा वफा ताम्ज कमदेनो दरोग वेल दीन एलावा आयशम आयशा दरोग वेलियो कना आओ रिशिया आयशा जी कमदेनो दरोग ना आयशा ना बल्कि जी कमदेनो फरियाल फरियाल हम जी कमदेनो दरोग वेल जी तोबा तोबा तोबा उफ उफ खुदा पाका
1: नरे नरे
0: खुजा उस दाठे जी कमदेन जान खुशालो दोपारा जड़ो खुशालो दोपारा बा लग मिक्स बुकूनो

0: मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल, शाह मंसूर
1: सवाबी। माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
2: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगल आर शमा।
1: ओहो पमीना बाजार टोपाई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टूल वेरायटी मौजूद दा।
2: नुदा सिवाया कना
1: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जे ब्रदर्स। फोन 09382732 65।